मन अभिमान विछड़ दूर गई आ। हर गातमित करता आपे जाने, साबित हर घर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे तो कंचन होवे, जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणे एक श्रद्धा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया। परम वैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते पाम नहीं कैया। बार बार खिन खिन पल कहिए, आर पार ना पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकारे, धर्म करो खट कर्म दरड़ैया। मन मुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बुड़ैया। नाम जपो नामे गल पावो, सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया। होमे जाय तन निर्मल होवे, गुरमुख परचे परम पद पैया। इहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जित लावे से कर्म कमैया। नानक जंतव जाए वाजे, जित फावे ते तराहे चलैया। बिलावल मोहल्ला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया। हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरे प्राण मसाए। सतगुर परस हर नाम समैया, जन कीटे हर नाम टकैया। सतगुर की तर लागा जाव, गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ। यो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मत मत तत कढ़ैया। लाल जवे हर नाम परगासिया, पांडे पाओ पवे तित अय्या। दासन दास दास होई रहिए, योजन राम भगत निज पैया। मन बुध अर्प थरो गुर आगे, गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया। मन मुख माया मोह वे आपे, यो मन तृष्णा जल तित खैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आगे, अनगल शब्द तुन तूर बजैया। हर उस्त करे दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर की रंग रता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज करतार चुए अत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लैया। मन हर कर्म करे अभिमानी, जो बालक बालू कर उसरैया। आवे लहर सुमंद सागर की, खिन मैं पिन पिन टह पैया। हर सर सागर हर है आपे, यो जग है सब खेल खेलैया। जो जल तरंग जल जले समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मोहल्ला चौथा, सतगुर परचे मन मुद्रा पाई। गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया, अमर पिंड पै साधु संग। जन्म मरण दो मिट गईया, मेरे मन साध संगत मिल रहैया। कृपा करो मसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया। रखाओ तजे ग्रस्त पया बनवासी, एकिन मनुआ टिके ना टकैया। धावत ताए तदे कर आवे, हर घर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया। आसा आस करे नहीं बूझे, गुर कै शब्द नराज सुख लैया। उबजी तर्क दिगंबर हुआ, मन दह दिस चल चल गमन करैया। पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साथ दया कर लैया। आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन सांतन आवे, मिर साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। पंडज जेरज सेत उत्खुज, वर्ण रूप जीजंत उपैया। साधु शरण परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया। नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, तन थना जट सैन मिलया हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई,

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह संतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मान तन काढ़ दियो।

हर घर श्रद्धा से वसाई, प्रभु छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभु आवर आवर किस कीजे, ता बाद सिगार फोकट फोकटैया, कियो सिगार मिलन कहताई, प्रभु लियो सुहागन थूक मुख पैया, थाम तेरी तू अगमुख साई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रामेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहा, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाउ खिन पाल रहे ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमले अमली मर गैया, जिन को प्यास होए प्रभु केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाउ तस विट्टो बाल बाल कुम गैया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एको प्रभु ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रभु आए मिले कन टील न पैया, कार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बाह पकर नानक कड लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कल मल दहेन, चढ़ नाव संत उधार।

लाड ले लाड लड़ाए सब में मिरहमारी होए गते पीत चितवो मिट अंधारे जो आस चकवी दिन चरे नांग पैम पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसरे तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा तुही बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंध मंगल रस खणा नावल नवतन नाह उबाला कम रसना गुण फना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुखर नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल मोहल्ला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रापेटे नानक सुखी हो त्यो जियो शांत सुख सागर प्रापाई है जब हो वे भागो राम मानन मान वजाई है आरे चरणी लागो राम दौर श्याम चातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाई गई राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गई राम पतत पावन प्रभ त्याग करे तो कत ठहराई गई राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाई गई राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसना राम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमो ही दुख ना जान ही उड़ जो नहीं बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे भिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सदगाविये पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविये पाई गे फल मंगे राम नान प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तल प्रभु ना विसर जिन सब कुछ दीना राम वड़पागी मेलावड़ा गुरु पिर चीना राम बहा पगड़ तमते काढ़ कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे।

गोविंद के सब इश पुजामी राम, नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम, रथ पिनेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम, प्रापेहित इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम, अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम, नानक जल जले समाया।

त्याग उपदेश गुरु सुन मनिया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरायन गुण उचर हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग जन नानक जीवे देख हर एक निमक कड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम अराग ना सब सुने जा लागे सहज ध्यान अराग ना छोड़ हर सेविये ता दरगे पाएगे मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिये तू के मन अवभान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर रही दयाल, मोहे समसर पापी बिलावल। नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटियो, हमारे कुल कौने राम कहो। जब की माला लई निपूते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरियो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरियो बिलावल। को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर साजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवा जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

आंदमूल सदा पुरखोतम अड़ बिन से गगन ना जाए ले मोए बैराग पयो इहो जीव आए कहां गयो रघाओ पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म किन जियो दीन रे हर मैं तन गए तन मैं हर गए सर्ब निरंतर सोए रे हे कबीर।

देव ना यो जति अभावे सेव ना यो योगी ना अवधूता ना समाय न काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत न को उपाई रहाओ ना यो गिरही ना उदासी ना यो राज न भीख मगासी ना इस पिंड न रग तू राती ना यो ब्राह्मण ना यो घाती ना यो तपा कहावे सेख ना यो जीवे न मरता देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे तो ही पद खोवे गुर प्रसाद में डग रो पाया जीव मरन दो मिटवाया कहो कबीर यो राम की अंश जस कागद पर।

सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अट पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े भूभत राजे हैं सिद्धे सुहागन

पुत्र है। कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम न चेतै, तान मन रमत रहे मैं खेतै रखाओ। जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोइए, दूध बिना कैसे मन

परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सुहर अंदले की लाकरी हर ए नमस्ते हर ए नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नास हरे प्राण अजमल कियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गण का तरी सो हर नयनों की पुत्री हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपटे परी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी ऐसी कंस मदन जिनकिया जी दान काली कौ दिया परणवे नामा ऐसो हरी जा जबद पै अवदा टरी गोंड पैरों पूत शीतला तावे खर बहान।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को

अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं दे बिरधानी सागत ए भी करत बेगानी हर का नाम अमृत कल माघे।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिनासव चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते समाया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम करी महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित हर गाएगे आपे कड़कड़ रहा बेआप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खुराने भ्रम नाठे दूरे नानक गौगुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तूर वीर तीर जमद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्तर।

बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मंतन रापे हर कै रंग, तोड सियाणप बहु चतराई, मन बिर हर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टकाई, राम कली महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत

अभागे तय लाज नाही, सुख सागर पूर्ण परमेश्वर, हर न चेत्यो मन माही रखाओ, अमृत कौरा बिखिया मीठी, सागत की बेद नयन हो डीठी, पूड़ कपट अहंकारी जाना, नाम सुनत जन बिशु डसाना, माया कारण सदगी चू है, मान मुख कवे न उस्तत करे, निरपो निरंकार दातार, तिसु प्रीत न करे गवार, सब सहा सिर साचा साहो, वे मोहताज पूरा पात साहो, मोह मगन लपट्यो परम गिरह,

सदा आनंद न हो वी सोग, कहू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पए बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग, देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए,

पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरन तरन प्रते रो नाओ एका शरण गही मन मेरे तुद बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ। जप जप जीवा

हलत पलत होहे दोवे सोहेले अचरज पुरख तिहाओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसे सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम यो कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजे नानक सुख सहज समीजे।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बया पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पय दयाल क्यों मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा सुमाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पय।

ज्यो जन्मे त्यो मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल लागे नाम सार्यो, आवत जावत जन्म गया, जा जमताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पावे, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत उद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आपद देखे, सागत मान अपमान पया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधुक पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, दे कुटाम्ब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, क्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भगत पया, आप मार गुरम कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर दृढ़ समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तिर पवन जो दिखाई, सत्य तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली मोहल्ला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार हो में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाहद वाजे, फड़कड़ जोत तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न पर जारी, पांच तात मिल अहर्ष दीव, निर्मल ज्योत पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदु, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत्व विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदु, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदु, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदु, जो जुत विचारी, माया मोह भवजल है अवधु, सब तरे कुलतारी, सब सूरज उचारे औदु, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदु, निरसे शब्द विचारी, आपे भगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली मोहल्ला तीजा, अष्टपदियां एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंसा कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जिन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिंह रहे लिवलाए, रहाओ संतोख पद कर चोली जोगी, अमृत नाम पुत पाई, ज्ञान का डंडा जोगी,
ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ, ਮਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਲ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਲਾਗੇ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੇ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਧਨ ਆਵੇ ਜੋਗੀ, ਅਵਮਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਈ, ਪਾਉ ਪਾਉ ਦੋਏ ਪਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਾ ਡੰਡੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਵਾਜੇ, ਇਨ ਬੇਦ ਤਿਸਨਾ ਖੰਡੀ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੇ ਤੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ, ਇਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੁਗ ਤਿਵ ਪਾਏ, ਨਦਰੀ ਆਮਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਨਸੇ, ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਇਹੋ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਕੁਟਾ ਮਛੋੜ ਪਰ ਪਵਨ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪ ਲਹਿ, ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਿੱਟੀ ਕਪ।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नी सीजे, कार्ज सबरे मन प्रवते आई जे, ईगा ऊगा एक ओही, जद का देखिए तत तत ओही, ते सेवत मन आरस करे, जिस विसरे एक निमक न सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना के सेवा ना करुमारे, गुर बोहित बड़ भागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली मोहल्ला पंजवा, कहु बिहावे रंग रस रूप, कहु बिहावे माए बापूत, कहु बिहावे राज मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम आधारा, रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ, कहु बिहावे वेद अरबात, कहु बिहावे रसना सा।

केलव काटन पय हरण तूसा गर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय शांत जस गावोड पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सो बावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियातिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसा सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंद सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप शंत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहाग्नि दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक कोट तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहिया सर्वठाई हर नाम नावनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब करे प्रे रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल साधक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडम्बरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे न सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ई पुत दैदस अलोकन मन मिलन कीपा प्यास जियो बिन वंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम बुझी शीतल पय मन तन उपजी सा

खिन में मुए जा शब्द पछाने हस्तर चीत मरन मन माने गुर कृपा ते ना पछाने गगन गंभीर गगन अंतरवास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आए न जाए गुर प्रसाद रह लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समास गुनी हर नाम चेत फिर पवे ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहुनी कर दर फिरता की बो तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते माग पिता सो तिया केते गुर चिले फुन हुआ काचे गुर ते मुक्त न हुआ केती नारवार एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रवनार दैज टूंड करे मैं पाया मेल पया सदगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मय जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कम उतारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंत ही दिसे सब कोय चित एक तई सुख होय चित बसेरा ते हरन आए मुक्त पया पस्यो कर जाए छीजे दे खुले एक गंड छिया ने देखो जग हंड तूप शाप जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया शूची जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना चीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया चीजे पई से बाल जापे आप प्रभु त्योलोय जुग जुग दाता अवर न कोय ज्यो पावे त्यो राखे राख जा जाचो देवे पदसाख जागत जाग रखा तू पावा जा तू मिले ता तुझे सुमावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिल गए बीस इक्कीस जग बोलन कह जस संवाद तूर मरे देखे परमात जन्म हुए नी जीवन आसा आए चले पे आस नरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल ना चंपे हर गुन गाए पाई नवनद हर कै नाए आपे देवे सहज सुपाए यानो बोले आपे बूझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सूचे सा चो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ सात अखोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करणी का हे तावो नानक गुरमत साज समावो टूटे नेहो के बोले सही टूटे बहा दूध गई टूट प्रीत गई बुर बोल दुर्मत परखर छी टोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी कर कार्य सार लहा साच न आवे तोटा तिर पवन ठाकुर प्रीत मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठैक मुई अगुण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते बेस करे कूड़ियार पर कर जाती ठाक रखाई मैल बुलाई ठाक न पाई सब सुवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सभी फाटे तीर सी गार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरब मुई करे अपने डीठी कंत सुजान डर आख्या गुर अपने निरपो नाम खान डूगर वाल तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मन अमृत पिया पारपूर देहे देह आखे सो कोई जय पावे तय दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत टूणत हो फिरी टह टे पवन करार पारे टहते टह पे हौले निकसे पार अमर अजाती हर मिले तिन कहे हो बल जाओ तिन की तूड़ अकुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवस तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो टासी जिमन अवर न कोए गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होए हणा को मेरा किस गही हणा को हुआ न होग आमन जान में गुचिए दुधा व्यापे रोग ना विहुने आदमी कलर कंध गिरंत गिण नावे क्यों छूटिए जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मत हीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मान तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिनको फास नारंच उड़े ता बेगुल बेगुले ताके चोकणी पंख तुटे पाही पड़ी
آگن پیڑ بنی بن ساچے کیوں چھوٹیے ہر گن کرم منی آ شڑا اے چھوٹیے وڈا آپ تنی گر پرسادی چھوٹیے کرپا آپ کرے اپنے ہاتھ وڈائیاں

अमृत एक है बुझे पुरख सुजान खिमा बिहूने खाब गए खून लख असंख गणतन आवे क्यों गणी खाब खाप मोए बसंख कदम बछाने अपना फूले बंद न पाए तद मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर होमे खपे खपाए सी बीजो वत्स विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सुने चो होय संपे को ईश्वर त्याई है संपे पूर्व लिखे की पाई है संपे कारण चाकर चोर संपे साधन चाले होर बिन साचे नी दर गए मान हारस पीवे छुट्टे निदान हेरत हेरत हे सखी होय रही हैरान हो करती मैं मोई सद रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे तरथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार नानक गुरमुख पाई गए हर सो प्रीत प्यार हर बेन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर सो रखो प्यार हर जपी हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटी हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार करते खत वडियाईया बूझो गुर विचार लिखिया फेर न सकीए ज्यो भावी त्यो सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख फूले पचमुए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहे आ जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदे दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहे सुपाए विद्या सो दे तातल है राम नाम लिव लाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए मूर शब्द न चीनई सूझ बूझ न काए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे नाम समालो नाम संग्रहो ला जग में ले सची पट्टी सच मान पढ़ गए शब्द सो सार नांग सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गल हार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो जिस आगे रहे रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक कार तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ क्या पविए सच सूचा होए साध सब मुक्त न कोई रखाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुवाओ साज को अरदास हमारी हाँ संत जना बल जाओ कहे बैसो कहे रहिए बाले कहे आवो कहे जाहो नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो कड़ कड़ बैस निरंतर रहिए क्या ले सतगुरु पाए सहजे आय हुकम सदाए नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप शाणे सच्चे सच सुनमाए दुनिया सागर दुत्र कहिए क्यों कर पाईगे पारो चरपड़ बोले औदू नानक देव सच्चा बिचारो आपे आखे आपे समझे।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बार जुगता कवन सो आवे कवन सो जाए कवन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, पिरतेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विघूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विघूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

गुणगाओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुणगाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदा सा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तापिए। रोग शोक दुख वंजे जिस नाउ मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रस। खंड ब्रह्मांड बेअंत

तिस दर्द निवारण जितु उठा चित तिस कदे न हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण जिसनु लाए सच तिस सच संभालण जिस आया हथ निदान तो रहा पालण जिसनु इको रंग भगत सो जानण ओ सबना की रेण बिरही चारण सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवा। उस पे निंदा नानक जी मैं हब मजाई छोड़िया हब किस त्यागी।

भगते बक शब्द सुनाया, सुनते सुर मन बसाया, कर करता उतस पारंग, कहे कबीरा सारंग, चंद सूरज ज्योत स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर ज्ञानी ब्रह्म विचार।

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरस, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नि समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड पर आला, आले पीतर ताती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

साधु तूर करो नित मजन सब केलबख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दोय कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्बस नाम निधान।

सदगुर ज्ञान मज्जन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख लिय उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिल लो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलबुख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मिल्यो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रमस्त के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए, ज्यो डोन जले गलायो, मत दे हर अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम में रहो लागो।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फुरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

आद हर हर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिखम है पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रस

ताकि ओट टिकाव सरे, जिसका जास सुंद पौतरी है तस रंग न लाव सरे। थोरी बात अल्प सुपने की, बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पद पाई।

असाध रोग उपजो तन पीतर करत न काहू टारियो प्रा बिसत मह दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए साचा सोए सुख पाया फिर दुख न होए।

निकुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ टोड़ न कत हो जाए, हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए। मारू महल्ला पंजवां, फूटो आंडा परम का मने पयो परगास, काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास। आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रघाव। जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार, जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा। सच थान सच बैठका सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महला पंजवा, वेद पुकारे मुगते पंडित का मामन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी गिरता चलेओ छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आ मुक्त मोको प्रामेले ऐसो कहाँ लहा रहाओ। तपसी करके देही सबदी मनुआ दैद स्थाना, ब्रह्मचार ब्रह्म तिकीना हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए के तीर्थ प्रमेयो उसमें क्रोध बिगाना,

गुरमती नाम उदारा, गुर पूरे पूरी मत है, पूरे शब्द विचारा, अड़सठ तीर्थ हर नाम है, किलब काटन हारा, जल बलोवे जल मसे, तत लोड़े अंध अज्ञाना, गुरमती जद मसीए अमृत पाएगे नाम नदाना, मानमुख तत ना जाननी, पशु माहे समाना, होमे मेरा मरी मर, मर जम्मे वारो वार, गुर के शब्दे जे मरे, फिर मरे न दूजी वार, गुरमती जग जी मनमान वसे, सब कोल उदाहरण हार, सच्चा वखर नाम है, सच्चा वापारा, लहा नाम संसार है, गुरमती विचारा, दूजे पाए कार कमावनी, नित टूटा सहसारा, साची संगत थान सच, सच्चे कर बारा, सच्चा भोजन पाओ सच, सच नाम अधारा, सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा, रस भोगन पात साहिया, गौ सो संघारा, मोटा नाव तराई है, गल औगुण भारा, मानस दात ना हो वही, तू दाता सारा, आगम अगोचर तू तनी, अवगत अपारा, गुर शब्दी दर जोई है, मुक्ते पंडारा, नानक मेल ना चूकई, साचे वापारा, मारू महला पहला, बेख बोहता लादया, दिया समुंद मजार, कंधी दिस ना आवई, ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना खेवटू, जल सागर असराल, बाबा जगफाता महाजाल, गुर प्रसादी उबरे, सच्चा नाम समाल रखाओ, सदगुरु है बोहता, शब्द लंघावन हार, तिथे पवन ना पाप को, ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए, हव जल तारण हार, गुरमुख लंगे से पार पहे, सच्चे सो लिवलाए, आवा गौण निवारया, ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमती सहज उपजे, सच्चे रहे समाए, साप पढ़ाई पाईए, बिख अंतर मन रोस, पूर्व लिखया पाईए, किसनु दीजे दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने, मन्ने नाओ संतोष, मागर मछ पहाइए, कुंडी जाल वताए, दुर्मत फाथा फाइए, फिर पर पछोताए, जमण मरण न सुजई, कीर्तना मेट्या जाए, होमे बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसे बिख जाए।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुखे आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

गुरपुरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सच बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाखिया, साचे कार साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आलस कणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया,

लगाओ। हे गुण मिस्र गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे। चार पदार्थ लय जग जन्मया, सिव शक्ति कर वास तरे। लागी भूख माया मुगज जोग, मुग्ध पदार्थ मोहे करे। कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद ढूंढत थाग परे। काम क्रोध अंकार वे आपे, कूड़ कुटां स्यों प्रीत करे। खावे पूगे सुन सुन दिखे, पैर दिखावे काल करे। बिन गुरु शब्द न या पछाणे, बिन हर नाम ना काल टरे। जेता मोह में कर भूले, मेरी मेरी करते शीन करे। तान तन बिन सहसे सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरध पया जो बन तन खिसिया, ताप कंठ बरुद्ध हो नयनो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम न हृदय हरे। तुरत गई काली हूं तौले, इसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे। पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे। खुशी खुआर पैरस भोगण, होगट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर थर मराए का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे। हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

युगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिनम है हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास

तले उगाए बैसे हो, श्रम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगटेओ, अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान तो पाए अपहाए जो निटे आवे, सीत ताका जाए आ पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए चरण सर सनात्यो मान।

अवद सहज रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई हे आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसे तुझ माए समाना नानक नीच पिखिया दर जाचे मैं दीजे नाम वडाई हे मारू महला पहला आपे धरती तौल आकाशन

किया जम्मण मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया ताप तराखे ठाक रहाया। कामल विगास हरे सर सुभर आत्मराम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए क्यों रहिए चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है। आप उपाया जगत सुबाया जिन सिरिया तिन तंदे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर ज्यों

वेपरवाहे आप उपाए दान सुमाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलया सहज रजाई हे। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे, भगत पाव गुर की मत पूरी, अणगल शब्द लखाई हे। एक नंगे भूखे पवे पवाए, एक हड़कर मरे न कीमत पाए, गात अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई हे। एक तीर्थ नाव है अन्न न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है, राम ना बिन मुक्त न होई, किद बिद पार लंघाई है, गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मनमुख राम न जपे अवाई, पाज पाए बूढ़े कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे, नानक साच मिले मन पाव है, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बेदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सदगुरे आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत अहन सलाहा, गुर संगत ए वडाई है। जो जो संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रह न सूते दिस है, संगत कुल तारे साज परिस है, कालमल मैल नहीं ते निर्मल, ओए रह भगत लिवलाई है। बूझो हर जन सदगुर बाणी, यो जोवन सास गए दे पुराणी, आज काल मर जाएगे प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, शायद कूड़ पते मन होमे, दो मार्ग पते पचाई है। छोड्यो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजे सातन आई, मिल स संगत नाम सलाहो, आत्मराम सखाई है। छोडो काम क्रोध बुरियाई, होमे तंद छोडो लंपटाई, सदगुर शरण परो ता उबरहो, क्यों तरिगे पवजल पाई है। आगे बेमल नदी अग्न बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला, पाड़ पड़ अग्न सागर दे लहरी, पड़ दजे मन मुक्ताई है, गुर पे मुक्त दान।

मैं कहन न जाई, अंत न पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सहज

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी।

दूर पंडारे तृप्त रहे आक ही जागे। जाचे सिर साधक बनवासी जाचे जति सती सुखवासी। एक दा तार सगल गए जाज दे दान सृष्टि जागे। करे भगत आरंग अपारा खिन में थाप्यो था पनहारा। पारो तोल बेअंत स्वामी होक मन भगती जागे। जे दे दर्स सोई तुझ जाने ओ गुर के शब्द सा रंग माने। चद्र स्वरूप से आना सोई जो मन तेरे पावी जाहे। जे चीत आवे सो वे परवाह जे चीत आवे सो सचा साहा। जे चीत आवे तिस पौ केहा अवर कहां किस की जाहे। तिस ना बूझी अंतर ठंडा गुर पूरे ले टूटा गंडा। सोरत शब्द हृद अंतर जागी अमें चोल चोल पी जाहे। मरे नाही साध सदगी जीवे अमर पया अवनाशी थीवे। ना को आवे ना को जावे गुरदूर किया परमी जाहे। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माए समाणी। चिड़े स्वाया नित नितरंगा कटे नाही तो ली जाहे। बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराब वन्नी सचड़ाया। परख जाने पाया सरापी फिर नाही ताई जाए। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास दा कुर्बानी। संत संग मास उपाया देख दर्शन ओ मन पी जाहे। मारू महला पंजवा सोलहे एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुर गोपाल गुर गोविंदा। गुर दयाल सदा बख्शिंदा गुर शास्त्र सिमरत खड़कर्मा। गुर पवित्र अस्थाना हे गौर सिमरत सब किल विख नासे। गौर सिमरत जम संग न फासे गुर सिमरत मन निर्मल होवे। गुर काटे अपमाना हे गुर का सेवक नरक न जाए। गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए। गुर का सेवक साध संग पाए गुर करदा नित जी दा ना हे। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए सदगुर भेट हर जस मुख पणिए। काल कलेश मिटाए सदगुर हर दरगह देवे माना हे। अगमे गोचर गुरु दिखाया पूला मार्ग सदगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना हे। गुर दृष्टाया सब नीठाई जल तल पूर रहया गोसाई। ऊज ऊन सब एक समाना मन लागा सहज ध्याना हे। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले ने जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे नाम अमृत पी पाना हे। गुर की बाणी समाए समाणी आप सुनी ते आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे तिन पाया निचल थाना हे। सगुर की महिमा सतगुर जाने चुग चुग करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाते जन तेरे नानक सत कुरबाना हे। मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद निरंजन प्रभ निरंकारा। हम वरते आप निरारा वर्ण जात तेन नहीं कोई। थवक में से ट्यो पाए रा लख चौरासी जोन सुबाई। मानस को प्रभ जी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए दा। कीता होवे तिस क्या कहिए गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूले तो बुझे जिसे बुझाए दा। हर सो का नगरे किया से उबरे जो सदगुरु।

करो दया किरमायणा निर्गुण को संग ले और लाए कर कृपा मुहि टह ले लाए पक्खा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सदगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेसा सिमरे देवते कोड़ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पस पंखी सा पूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरा भरिया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सातर संयोगा अलख न लखिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भक्ति लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोड़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सह तुना सो तनवंता जिन प्रोत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मईल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मद अंत प्रतु है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संघर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा सच्चे साहेब गैर गंभीरा कौ नानक से जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गद पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे घर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जब हो चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर लिहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प तरी अराग जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो मे हंतना जल त पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जल कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार नाही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काढ़ लगे प्रवे अपने अम्यो तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਤੇ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਬ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿੰਦ ਆਨ ਮੰਗਣ ਹੇ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਤ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਜੋ ਤੂ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ੂ

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे। सास ग्रास सुमाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगुनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सास्त सिमरत वेद बखाणी, जन्म

दिन राती जो जो जपे सोई वड़पागी बौड़ ना जो नी पावना जिसनु बिसरे पुरख बेड़ाता जलता फिरे रहे निरताता अकिरत कणे कौ रखे ना कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजया माद गर्भ में रख निवाजया तेस्यो प्रीत शाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनुग्रह स्वामी मेरे कड़कड़ वस्ते सबन के नेरे हाथ हमारे कशुए नाही जिस जनाए तिसे जनामना जाके मस्तक तुर लिख पाया तेसी पुरख न व्यापे माया नानक दास सदा सरणाई दूसर रवे ना लावना आग्या दूसू सब कीने अमृत नाम बिरले ही चीने ताकि कीमत कहण न जाई जगत ओई समावना तोई भगत सोई वड़दाता तोई पूर्ण पुरख विधाता बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तेल नी बदे कटे ना कटाए सोई हुए जे करते पावे कह के आव न्यामना अंध कूबते से ही काढे जन्म जन्म के टूटे गंडे कृपा तारखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यामना तेरी कीमत कहण न जाई अचरत रूप वड्डी वड्याई भगत दान मंगे जन तेरा नानक बल बल जामना मारू वार महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला वेण गाहक गुण वेती है तौ गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माए सुमाए मोल अमोल ना पाई है वणजना लीजे हाट नानक पूरा तो

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सदगुर भेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फेर जन्म बिनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरास सिमरत सास्त सोध देख

न जान ही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपा गे रखाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खाल चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

वचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कहे कबीर आरामे रम छूटो नाए त बूढ़े पाई बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ जटा पसम लेपन किया कहा गुफा मैं बास मन जीते जग जीते जाते विखिया ते होए उदास अंजन दे सवे कोई टुक चाहन माए विडान ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतर्गत हर पेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए रिद सिद्ध जाको फुरी तब काहू स्यो क्या काज तेरे कहने की गद क्या कहो मैं बोलत ही बढ़ला।

सिरानो कहू ना सिमरियो राम, कहे कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार, अराग मारू बाणी जय दियो जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चंद सत पेदया नाल सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया, आ बल बल तोड़िया, आ चल चल थपया, आ कड़ कड़िया तय अप्यो पिया, मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया, अरहाओ अर्ध को अर्धया, सरद को सरदया, सलल को सलल सम्मान आया, बद जय देव जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर, मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, हरहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा, तान जोबन का गर्भ न कीजै, कागद ज्यों गल जाएगा, जौ जम आए केस गए पट गए के,

नित देवे चढ़े सुवाया, अपरंपर आपे था पुथापे, इस पावे सो होवे, नानक हीरा हीरे विद्या, गुण कै हार परोवे, गुण गुणे समाने, मस्तक नाम निशानु, सा समाया चूका आमन जानु, सच साच पछा।

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ हवर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

पंच दास तीन दुखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हर एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रमो सागर लग संतना पगपाल केदारा मोहल्ला पंजवा कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर

खुले कपट तट बो तृष्णा जीवो पेग दरसारी कौन सो जतन उपाओ कनेगा सेवा कौन बिचारी मान अपमान भो तज नानक संत है संग उधारी।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस्त।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ। तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमला नहीं, नेत्री तुंद करन पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

का आकारा काट वध को करे बिचारा कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृही पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे

होए निकर वसै सहज सुभाए गुरमुख नाम से मन आए आपे वेखे वेखणहार नानक नाम रखो उरतार भैरो महला तीजा कल युग में राम नाम उरतार बिन नावे माथे पावे शार राम नाम दुलभ है पाई गुर प्रसाद।

केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो ससंगत मेलाए, नांग किसनों दे वड़े आई।

कुछ लय उबार खिन में भयान रूप निकसा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

माया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रदपाली जन नानक तार हो नदर निहाली भैरो महला चौथा सबकड़ तेरे तू सबना माहे तुझ ते बाहर कोई नाहे हर सुख दाता मेरे मन जाप हाँ तुसा राही

जिसे लिखिया तो गुरमत हिरदे हर नाम समार मध सूदन जपके उर तार देही नगर तस्कर पंच धातू

इनका दर्स देख मन बिकसे खेन खेन तिस को हों बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी हम दासन दास की जे पनिहारी रहाओ। तेन मत उत्तम तेन पद उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तेन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगे काटे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तेन नग काटे सिरजनहारी और आप बुलावे आपे बोले और आप निरंजन निरंकार निराहारी और जिस तू मिले सो तू मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। भैरों महला चौथा सत्संगत साई हर तेरी जे तर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुने।

हलत पलत जाकी स श्याम रखाओ, प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत, मीत हीत तन ने पारणा, तन तन मेरे नारायणा, नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी, भैरों महला पंजवा, आगे दियो पाछे नारायण, मद पाघर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन रखाओ, रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर।

प्रहु राम रसायन नित उड़ पीबो हार हार सुना कहो रहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

सगले संसार ओड उपाव चित दहे प्राणी सो होवे जे करे चोज विडाणी रख हो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार रघाओ जिन सेव्या निरपो सुख दाता तिन पो दूर किया एक पराता जो तू करे सोई फुन होए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन

मन प्रगट पया नाम लयत पावतन ते गया नाम लयत सगल पुरबाया नाम लयत अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लयत दुख दूर पराना नाम लयत आत्म मूढ़ सो ज्ञाना नाम लयत प्रगट उजियारा।

रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी, खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया, खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान, सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा, हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार, भैरों महला पंजवां, मुए दुहागन आप सिगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद, कर कृपा मुए पेटे कंत रगाओ, तब्द बुझी पूर्ण सब्यासा, मिटे अंधेर भय परगासा, अनघ शब्द अज

हर घर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकी रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आलक आवे बेसवा भजत किश न शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे राच रहया बिरथा व्यवहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जागे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न तावे ताओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़ लाए लय सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसद की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे अघर नाम सगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अभर अपार अरहाओ नाम हमारे नेचल तनी नाम की महिमा सब

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करण करामनगार स्वामी, ताकते

तेरा परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरो महला पंजवा परस में छोड़ी प्राई निंदा उतर गई सा मन की चिंदा लो मोसव की नो दूर परम वैष्णो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ अंग बुद्ध का छोड़ संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए हर हर हरे सा जना के संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व में पूर्ण भगवान प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर कृपा जिस राखे आप तोई भगत जपे नाम जाप मन प्रगास गुर ते मत लई कहो नानकता की पूरी पई भैरो महला पनवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा संग पागे वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तरमो करता बंधन काटनहार मन वस तौ सुख पावे निज कर बस सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी शरणाई ज्यों भावे त्यों रखो गुसाई भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कार कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत हूंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई।

राम नाम रिद्ध दियो निवास, सदा आनंद नाही किज सोग, दुख दर्द न व्यापे रोग, तब के तेरा तू करण हार, पार ब्रह्म अगुण अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी, जल थर महील रविया सोए, नानक सब प्रवते होए, भैरो महला पंजवा, मन तारा ता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूर्ण करणे, आठ पैर गावत भगवंत, सगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार रहाओ, सोई ज्ञानी जे सिमरे एक, तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी, सो पतवंता जे आप शानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण हृदमाय निवासा, कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप वित पाम सब कीने, राम रसायन

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन।

का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

जन कबीर को जोर न पहुँचे, कहाँ करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

गढ़ पीतर यूं गढ़ लियो न जाई। प्रेम पलीता सुरत होवाई गोला ज्ञान चलाया। ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एक चोट सिझाया। सत संतोख लै

विद्या कोट सबे गुण कहे तऊ पार ब्रह्म का अंत न लह बावन कोट जाके रुमावली रामन सयना जयते शली सहज कोट

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरि परमे नाम दियो इहो करना। अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरि जो

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुहे आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने।

सगल कलेश निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद। कार दूजा जौ गुर देवता मिले मुरार, जौ गुर देवता उतरे पार। जौ गुर देव ता बैकुंठ तरे, जौ गुर देवता जीव तमरे। सत सत सत सत।

मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाए नाम हरी रखाओ। बिन भगति नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी। बिन भागा सत्संग न पाईए कर्म मिले हर नाम हरी। घड़ घड़ गुप्त उपाए वेख प्रगट गुरमुख संत जना। हर हर करे सुहा रंग पीने हर जल अमृत नाम मना। कौ तख्त मिले वडियाई गुरमुख से प्रधान किए। पारस पेट पए से पारस नानक हर गुर संग थिए।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

वार, सोई करे जे हर जीओ पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुपाए, सच फल लागे सतगुर पाए, अरहाओ आपे नेड़े आपे दूर, गुर के शब्द वेखे सद हजूर, छाव कणी फूली बनराए, गुरमुख बिकसे सहज सुपाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सद गुर गवाई विचों झूठ भरांत, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाएगी नाम प्रसाद, आपे करता सब रस भोग, जोगश करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए।

गुर शब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए।

हर चित लाए इन विद यो मन हरिया होए हर घर नाम जपे दिन राती गुरमुख होमे कड्डे धोए रहाओ सतगुर बाणी शब्द सुनाए यो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे

ज्ञानकमागे पूछ जना सो तपसी जे साध संग सत्यानी जे गुरे रंग से निरपो जिन पौ पया।

प्रभु देहे साध संगत में इहो विश्राम सुधारे दे जपी प्रभ तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ में समाहे।

साधु संगत गुरे बताई ऊहा जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए जिस

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जन किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी।

साधु इव तन मिथया जानो, या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो रघाव। इव जग है संपत सुपने की, देख कहां ऐडानो। संग तिहारे

काम रखाओ यो जग तुए का पहार ते साचा मान्या के विचार तन दारा संपद ग्रहे संग न चाले समझ ले एक भगत नारायण होए संग कौ नानक पाइते एक रंग बसंत महला नामा कां भूल्यो रे झूठे लोभ लाग कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रखाओ सब सुपने कै यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजतागे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सब साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगतहीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, तब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद न सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्ते हुक्म सुमाए, दूसू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे,

निर्माल निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैल नी सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा।

लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मैं गवार माया मुए मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोगे।

आओ इन वेद हर मिलिगे वर कामन तन सोहाग प्यारी जाद बरन कोल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर था।

बौरे जो दिसे सोशार, जिस बेख्या को तुम अपनी कर जानो ता छाड़ जाओ सिर पार, तेल तेल पल पल औद फुन घट बूझ न सके गवार, जो कुछ करे जे साथ ना चाले तो सागत का आचार, संत जना के संग मिल बौरे तो पावे मोख द्वार।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद, गुणी निदान ससृढ़ का प्रभु, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एका, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यों गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है।

सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर तोड़ न कथु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कौरी जाए, होत कृपाल दीन दयाल प्रभ जन नानक दास दिसाए।

ते ना ही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो किरपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते ना ही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणद मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दर्श दे।

कहो नानक मैं सहज कर पाया, अर भगत भंडार खजीना। सारग महला पंजवा, मोहन सब जी तेरे तू तार है, छुट्टे संघार निमक कृपा ते, कोट ब्रह्मंड उधार है रघाव। करे अरदास बहुत बेनती, निमक निमक सा महार है, हो कृपाल दीन दुख पंजन, हा दे निस्तार। क्या ए भूपत बपरे कही है, कहो ए किसनू मार है। राख राख राख सुख दाते, सब नानक जगत तुमार है। सारग महला पंजवा, आप मोहे तन पायो हर नामा, पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है, यो लिखियो लेख मथामा रखाओ। खोजत खोजत पयो बैरागी, फिर आयो दे गिरामा, गुर किरपाल सौदा यो जोरियो, हथ चिरियो लाल अगामा। आन बापार बंज जो करिए, तेते दुग सहामा, गोविंद भजन के निरपय वापारी, हरास नानक राम नामा। सारग महला पंजवा, मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला, गुर पां पगर प्रसे वालाए, सदयाल घर टोला रघाओ। प्रभु तू ठाकुर सरप्रद पालक, मुए कलत्तर सहित सब गोला, मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे, कस बढ़ावे केतक भूला। जन नान के प्रापुरख विधाते, मेरे ठाकुर अगे अतोला। सारग महला पंजवा, रसना राम कैत गुण सोहं, एक निमक उपाय समावे, देख चरत मन मोहं। रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत, हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो, बन आई प्रभ तोहं। के लभ गए मन निर्मल होई गए, गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रापाया, करण कारण समर्थोहं। सारग महला पंजवा, नैनो देखो चलत तुमासा, सबहु दूर सबहु ते नेरे, आगम आगम कटवासा। रहाओ अपूल ना पूले, लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा। खिन में सा सुवार बिनाहे, भगत वशल गुण तासा, अंध कूब में दीप बलियो, गुरदे कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेग सुख पाया, तो पूर्ण होई आसा। सारग महला पंजवा, चरणे गोविंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जेता जिताइए, तेतो ही दुखवावा। रघाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, हस्त पुनीत तहलावा। हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो, मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्बन दान नाम हर हर कहे, जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो, सुख सहजे अनंद बिहावा। सारग महला पंजवा, त्यायो अंत बार नाम सखा, जे माल पिता सुध भाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा रहाओ। अंध कूप गृह में तिन सिमरे हो, जिस मस्तक लेख लिखा, खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिख। अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आगाए रसन चखा। कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल तिखा। सारग महला पंजवा, गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया, भयो किरपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया। रहाओ जेते सास सास हम लेते, एते ही गुण गाया। निमख न बिसरे करी न बिसरे, सत्संगे जत जाया। हौ बल बल बल बल, चरण कमन कहो बल बल गुर दरसाया। कहो नानक काहू परवाहा, जो सुख सागर में पाया। सारग महला पंजवा, मेरे मान शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो कर्म पयो परगासा, काट काट हर हर डीठा। रघाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो, सर्व थान कट बीठा, पयो प्राप्त अमृत नामा, बाल बाल प्राप चरणीठा। सत संगत की रेन मुख लागी, की ये सगल तीर्थ मजनीठा। कहो नानक
ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਪਏ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਏ ਮਜੀਠਾ, ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰਸਾਥੇ, ਨਿਮਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਹੀ ਰੇ ਬਸਿਓ, ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ਰਗਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ

कहो नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पय लाते, सारग मल्ला पनवा अरे मूड़े, आन कहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे, भूल भूल बिखाई रखाओ, प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते, ते सिहोरो चुनई राई, मोन स्यों बाबर मन मोयो, झूठ ठ गौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बने आई, सगल निदान करे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई, सारग महला पंजवा, ओ अंग प्रेपीत चीत पै लरिया, जो तो बचन दियो मेरे सदगुर, तो मैं साज सी गरिया, अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उदरिया, हम नीच बिरख तुम मैं लागर, लाज संग संग बिसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया, गुर कृपाल नानखर मिलो, तो मेरी सूख से जरिया, सारग महला पंजवा, मन ओए दिनस तन परवाना, सबल ते करी संयोग सुहावे, सदगुर संग गयाना रखाओ, तन सुभाग तन सुहागा, तन दिल जिन माना, यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा, हियो कियो कुर्बाना, कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेख दृष्टाना, जो कहो मुखो सेव के बैसिए, सुख नारग अंत न जाना, सारग महला पंजवा, अब मोरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सदगुर शरण पया, अरहाव सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे, अंग रोग सगल की खया, और पराध खिन में खौ पई है, गुर मिल हर हर कहया, पंच दास गुर वसगत कीने, मन निचल निरपया, आए ना जावे ना कद ही डोले, फिर नानक परा जया, सारग महला पंजवा, प्रभ मेरो एक उत सदा सहाई, मन मोर मेरे जी को प्यारो, कमन कहां गुण गाई रहाओ, खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा आनंदाई, प्रतपाले बारग की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई, कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाव, सुख मंगल कल्याण जिसे कार, तिस की सरणी पाइये, तिसे त्याग मानक जो सेव है, तो लाज लोन होए जाइए, एक ओट पकड़ी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये, गुण निधान नांग प्रा मिलया।

मेरो मन जड़ का तुझे सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रा मेरे, जो जाने त्यों पारे रगाओ, जब भूखो ता भोजन मांगे, हकाए सुख कनारे, तब अरोग जब तुम संग बस्तो, छुटक तो हुए रवारे, कवन बसेरो दा दासन को

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

जन्म जन्म के बखई तुम तारे सो मत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रा बिसरत सास सास कर गाई जो जो संग मिले साधु कह ते पतत पुनीता।

छोड़ो कपट होए निरवैरा तो प्रभ संग निहारे सचतन वंजो सचतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही।

कैत सुनत किश सांत न उपजत बिन बसास क्या सिखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे का लेखा जाके रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत पेखा नानक दर्श मगन मन मोयो पूर्ण अर्थ बसेखा सारग महला पनवा सिमरन राम को एक नाम काल मल दग्ध होए किन अंतर पूर्ण दान इस नान रखाओ आन दिन जार बिरथा श्रम कालत

पंजवां त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बाते अंत पर पिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

मोह मद मत सिमरत ना गए हरे रगाओ, साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले, प्यार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

मान पात पेत सुत बंधप हर सर्व स्थान मोर त्रिग शरीर अष्ट विष्टा क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिन सो आन ने होर सारग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सज जोए। सारग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब विस्तार रखाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे बौर जन्म ना मार,

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सारग मोहल्ला पंजवा कंचना बो दत करा होम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम थुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैत जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किसी संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जंस पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी चीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त पय सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पय कृपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाद सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

पौड़ी गुरमुख चल तरचाय हून गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचरै हर मन मसाया सगत गई प्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनके पोते पुन है गुरपुरख मिलाया नानक सहजे मिला।

आख ना जापे आख पौड़ी, नाए सुने अमन रहसी है नामे साते आई, नाए सुने अमन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपज नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत नामे गल पाई, गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की पेदी, झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरे सबताई, झूठ ना धरती झूठ ना पानी, झूठ ना पौने माए समाणी।

सहजे सुख पाया, नाय मने सांत उपजे, हर मन वसाया, नानक नाम रतन है, गुरमुख कर त्याया।

नाय मने सुर उपजे नामे मत होई, नाय मने गुण उच्चरे नामे सुख होई, नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई, नाय मने साल आई है पापा मत तोई, नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता, जा बूझे ता सूझे सोई, नानक आखे कूक न होई। महला पहला। जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा, हो ना ही तू होवे, आपे सकता आपे सुरता, शक्ति जगत परोवे, आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखे, नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवे तुर लेखे पौड़ी, नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई, नाम निरंजन वरतदा अरव्या सब ठाई, गुर पूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई, नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार, कूड़ बोल बोल पौंकना।

सच उगवै दरगे पाई गेताओ वेद व्यापारी ज्ञान रास करमी पल्ले होए नानक रासी बारा लद न चलिया कोए पौड़ी निम बिरख बहु संचिए अमृत रस पाया बिसियर मंत्र विसाइए बहु दूध पियाया मानमुख अपिन ना पिजई पत्थर ना वहाया बिख में अमृत सिंचिए बिखका फल पाया नानक संगत मेल हार साब बिख ले जाया श्लोक महला पहला मरणा मुहूर्त पुछया।

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसमी दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जे पांडे, और बहुत सिख क्या दी जाए पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया की माया तोहे गई, पछते

फिर हुए ना विनाश, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरस, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुरु का पाणा मन ले शब्द रखे उरतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसम पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए। हर से ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख ले जाए। जन नानक त्रिवते गाए गुण, हर दर्शन दियो सुपाए। पौड़ी गुरपूरे की दात, नित देवे चढ़े सवाइया। तो देवे आप दयाल, ना छपे छपाइया। हिरदे कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया। जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याई। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाहो है। तिस नाल स्याणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए। आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए। गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी।

नार गर्भस थोरी बात मंद नाज टका चार गांठी आइडो टेडो जात रगाओ बहुत प्रताप गांव सो पाए दो लख टका बरात दिस चार की करो साहिबी जैसे बनघर पात ना को ले आयो यो तन ना को ले जात रावण हूं ते अलक शत्र पा हर के संत सदा सिर पूजो जो हर नाम जपात जिन को कृपा करत है गोविंद ते सत्संग मिलात मात पिता बंता सुत संपत अंत न चलत संगात कहे कबीर आराम पज बौरे जन्म

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान,

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पं गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्छे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधार। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद सो

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई। मान रहे

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विखाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

जिनकै प्रीत नाही हर हिरदय ते कपटी नार नित कपट कमात। तिनको क्या कोई देख वाले कोई आप बीज आपे ही खांत। हर का चेन सोई हर जन का हर आपे जन्मे आप रखांत। तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत। मलार मोहल्ला चौथा आगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया। सत संगत साध पाई वड़ भागी

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पय सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवां, कानघर बरस सगल जग छाया। पय किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेश तृष्ण सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण मारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिल।

आतन साधु संग उधारे रहाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यों जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अच्युत अविनाशी

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तोनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संग रामैया।

चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबले दर्श पेखे गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषमे विषम पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार मोहल्ला पंजवा बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई।

बिन इखे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार मोहल्ला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

मन रे सतगुर सेव समाए, वडे पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसे मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, सलोक महला दूजा, सावन आया हे सखी कंत

सच्चे शब्द निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा, वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वस्या मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा, सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है, किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा सुमाए। पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए, साधना देव ही एक पाला ककर पन्न, शीतल जल हेव ही एक पसम चिड़ावे अंग, मैल ना तोव ही एक जटा बिकट बिकराल, कोल कर खोव ही एक नगर फिरे दिन रात, नींद ना सोवगी एक अगन जलावे अंग, आप विगोवगी विणनावे तनशार, या कह रोवगी सोहन खसम द्वार, जे सदगुर सेवगी।

पौ उपज पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पय जल लंघिए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिसदा अंत न पारावार, मनमुख पय की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार, श्लोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे सौण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

महापाल सहस्र फनी बासक से जवालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी छिन्मे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिरपवन तनी जाचे कार निट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहेला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बार नीरे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

अवतार अनक स्वांग काशे पेह तारी जैसो सा तैसो धृटारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सज करणी सार कानड़ा मोहल्ला पंजवां तेरो जन हर जस सुन तुमायो रहाओ मने प्रगास पे प्रभ की शोभा जल कद पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीर अथायो ओत पोत मिलयो भगतन कौ जनस्यो परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां संतन पै आप उदारन आयो रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो ताटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो अस्त पय बसे सुखताना बौर नकत हूतायो संत प्रसाद तरे पुल लोगा नानक लिवतना मायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बने आई जो प्रकीनो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई सब मैं रव रहा प्रभ एक है पेख पेख नानक बिकसाई कानड़ा मोहल्ला पंजवां ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले

सेवक जो तत जोग कौ बेतै रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेतै बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेतै सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नहीं किश लेतै कहो नानक जान हर हर हर।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमूला।

आस प्यास सबल मूर्त ओम गही यो तरसना दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान मोह त्याग छोड़ो।

विकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन।

औरंगी सब एकत बजन चलावै गो, गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो। गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो, जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो। बिन गुर भेटे को मैल न पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो, सतगुर मिलत महा सुख पाया।

रामायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित ते आई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंध उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए विकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परम।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वडभाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिर हड़ी हर एको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप न रेखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर घर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर घर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

आवे को सुने को उचर सुनावे, जन्म जन्म की मल उतरे मन चिंदिया पावे, आवन जाना मिटिए हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराहे सब कुटुंब तरावे, जन नानक तिस बलिहारणे जो मेरे घर प्रभावे, शुद्ध राग कानड़ा वाणी नाम देव जियो की एक ओंकार, सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाओ, बसे कटा कढ़ लीपना शीपे बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी बीठल ऐसा, निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग, गुर प्रसाद रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी एक तिलनी कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमादो गुण गावे हर राया, तुम जल निद हा मीने तुमरे तेरा अंत न कतहू पाया, जन कहो कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण मोहल्ला चौथा हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया, जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रभ किए सब काले मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक सरन।

आपे जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रखाओ रसना एक जग गाए न साकै बहु कीजे बहु रसन थे बार बार खिन पल सब गावे गुण कह न सके प्रभ तुमन थे हम बो प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे प्रभ दिखन थे।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें सुमान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हारं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को थम।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोत पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझै डंड तरमरा एका दीजै। सब तीर्थ वर्त जग पुन किए हिवे गाल गाल तन चीजे। अतुला तोल राम नाम है गुरमत।

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाओ, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, बिचर बिचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर बेधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम काट काट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विज कल युग काट काट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

जो कुछ करे तो नरक पर है। एको शब्द एको प्रवर्त है, तब एक स्ते उत्पत चल है। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मेरे संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

राम राय। सब वरते सब में एक, जन नानक कौ हर कृपा तारी, गुर भजन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा, आगम दयाल कृपा प्रवतारी, मुख हर हर नाम कहे, पातत पावन हर नाम तिहायो। सब किल बिख पाप लहे, जप मन राम नाम रब रहे, दीन दयाल दो पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बस्यो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रट्यो, कर मंदिर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उदयाने, ते सागत मूड मोहे, ज्यों मृग नाभ बसे बास बसना, प्रम प्रम्यो चार गहे। तौं वट अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कौ गुर हासिर तरयो, हर राम नाम रब रहे। प्रभाती महला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सदगुर बचन सुखा ने ही अरे, हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मान भाज राम नाम हर निमुखफा। हर हर दान दियो गुरपूरे, हर नामा मन तन बसफा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जब शोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पये सुहेले, मुख उज्जल गुरमुख तरफा, आन पौ हर हर हर लिव लागी, हर उतारियो गुर निमुखफा। कोड़ कोड़ के दो सब जन के, हर दूर पिए एक पलफा, तुमरे जान तुम ही ते जाने, प्रभ जान्यो जन ते मुखफा। हर हर आप तरयो हर जान महे, जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा, गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप पहा, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बां दे कड पहा, जप मन राम नाम अर्धम्बा, उपजाम उपाए न पाइये कतहु, गुर पूरे हर प्रभ लाभा रघाओ। राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रस पहा, लोभ मनूर कंचन मिल संगत, हर उतारियो गुर हर पहा, होमे बिखियानत लोभ लुभाने, उत

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, सिद गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जे गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

निरपय साध परे हर सरना आनंद सहज रस सुख कन्हेरे दुश्मन दुख न आवे नेरे गुर पूरे अपने कर राखे हर नाम जपत केलबग सब लाथे संत साजन सिख पय सुहेले

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने हर

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहपहं गुरप्रसाद राग जय जावंती महला नामा राम सिमर ए है तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिरस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जाद आज है जय जावंती महला नामा राम भज जन्म से।

अंत बार संग तेरे यह एक जात है विख्या जो विसार प्रभु कौ जस ही तार नानक जन कै पुकार अवसर विहात है जय जावंती महला नामा रे मन कौन गद होए है तेरी ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान देखे सो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाओ मांस को जन्म ली।